से उसे कोई फायदा नहीं है, न उसे कोई कंसर्न है उससे। वन यब्तअद अन अल-जिदाल व कसरत अल-कलाम, और अपने आप को दूर करे जिदाल से और कसरत कलाम से, ज्यादा बोलना, मसाइल में उलझ जाना। आप अलग घर में से नहीं गए वहां पे, आप नसीहत करें, किसी से गलती देखते हैं मस्जिद में, आप नसीहत करें। यह जगह जिदाल की नहीं है, यह जगह डिस्कशन की, मुनाजरे की नहीं है, यह वक्त मुनाजरे का नहीं है। शैसा फरमाते हैं खुरूज मुअतकिफ मिन मस्जिद, अगर कोई एतिकाफ करने वाला शख्स मस्जिद से, अपने मुअतकिफ से बाहर निकल जाए मस्जिद से, उसका हुक्म क्या है? शैसा फरमाते हैं अल मुअतकिफ यलजम अल मस्जिद मुद्दत एतिकाफ, एहतिकाफ करने वाला जिस मुद्दत की उसने नियत की है उस मुद्दत तक मस्जिद में एहतिकाफ करे उस पर लाजिम है, उस पर वाजिब है। वला यखरुज मिन मस्जिद इल्ला लिअम्र ला बुद्द लहु मिन्हु, और मस्जिद से उस वक्त तक ना निकले जब तक कि कोई जरूरत ना हो। कक़ज़ा अल-हाजा, जैसे कज़ा हाजत है, व तहारा अल-वाजिबा, और वाजिब तहारत, वल अक्लु عند عدم من يحضره اليه في مكانه, और खाने पीने के लिए भी वो बाहर जा सकता है अगर कोई शख्स उसके लिए खाना ले ना लेके आए, या कोई ऐसा बंदोबस्त ना हो कि कोई बाहर से उसके लिए खाना आता हो। इस सूरत में उसके लिए जायज है कि वो बाहर जाए और खाना भी खा ले। ولا يعود مريضا, और उसके लिए भी जायज नहीं कि वो किसी मरीज की इयादत करे। ولا يشهد جنازه, और ना ही नमाज जनाजा, नमाज जनाज मस्जिद में होते हैं ना, वो तो पढ़ सकते हैं। यशद जनाज यानी जनाजे के साथ जाए कब्रिस्तान में उसकी तदफीन के लिए जाना, ये भी जायज नहीं। इल्ला अन यश्तरित ज़ालिका फी बदअ इतिकाफ, इल्ला ये कि मरीज की इयादत या जनाजे की नमाज या मैयत की तदफीन के लिए शर्त रखे अपनी नीयत में, जब उसने इतिकाफ का आगाज किया तो नीयत में अगर वो शर्त रखता है तब उसके लिए जायज है। वह यजूज المعتكف, जायज المعتكف के लिए ان يتحدث مع من يزوره من قريب او صاحب, कि वो कोई उसको زیارت के लिए जाता है मिलने के लिए, या कोई उसको दोस्त मिलने के लिए जाता है, उससे बातचीत करना उसके लिए जायज है। ولا ينبغي له الاكثار من الحديث, और उसके लिए दुरुस्त नहीं कि वो लंबी लंबी बातें करे। يتفرغ للعبادة, ताकि वो इबादत के लिए فارغ हो जाए। مبطلات الاعتكاف, वो कौन सी चीजें हैं जिससे اعتكاف باطل हो जाता है? नंबर एक, الخروج من المسجد غير ضروره, مسجد سے باہر نکلنا بغیر کسی ضرورت کے۔ ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے, بیٹھے بیٹھے اس نے دیکھا کہ میں بور ہو رہا ہوں, باہر چلا گیا, کسی دوست سے جا کے ملا, یا چائے پینے چلا گیا, چائے پی کے واپس آ گیا, اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا, ضرورت نہ تھی۔ تو بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر دو, مباشرت الرجل امراته, اگر شادی شدہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اعتکاف کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے, اگر وہ گھر جاتا ہے اور بیوی سے ہمبستری کر لیتا ہے, اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں گیا کسی ضروری کام سے, کھانے کے لیے گیا, مثال کے طور پہ کھانا نہیں کوئی لے کے آتا, اس کے لیے جائز گھر جا کھانا کھائے پھر واپس آ جائے۔ اگر کوئی شخص نہیں اسے کھانا پہنچانے کے لیے, ایک شخص اکیلا ہے, उसकी बीवी है, कोई और तीसरा शख्स है नहीं, कौन लेके आएगा? कोई भी नहीं। ऐसी सूरत में खाने के लिए तो हो जाएगा, और अगर उस मस्जिद में कवाय हाजत की जगह भी नहीं है, वो साथ कोई और जगह भी नहीं है, वो अपने घर में जाकर कवाय हाजत करके वापस आ सकता है। लेकिन घर में गया जरूरत के लिए, लेकिन हम बिस्तरी कर बैठा बीवी से, तो उसका जो एहतिकाफ है वो फासिद हो गया, बातिल हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुबाशिरहुन्न वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, अपनी बीवियों से सोहबत ना करो इस हालत में, उस सूरत में जबकि तुम एहतिकाफ की हालत में हो। نمبر تین, اذا نوى قطعه, اگر وہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف سے باہر نکلنا چاہتا ہوں, تو انما الاعمال بالنیات, نیت کے ٹوٹنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین ہیں مبطلات الاعتکاف۔ علماء کا ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کہاں پر جائز ہے, کس مسجد میں, یعنی اعتکاف کی جگہ کون سی ہے, اور اس میں تقریباً کتنی ہے؟ نو قول ہے علماء کے, نو, نائن۔